0: कुलास तुम कुफा भी
1: निवान से चाम सोना फुमारे या चुमुला ना सोंसन तीने नंबरी स्टा अफ़ाती मिनिस्टर से या चुनिस मचारकार से तुम्हाने मिलापंतनान से या नाम फारेर वे राचुम प्रिस्टानर रो मगती चुमाजो न्यूनारे तीने निश्चिसरा राई ने नहीं जाने निवान से रफ़ामियास फुल दिमाग चुरवारी म्यू तो नंदाला ने ना इज़ियान म्याचुनियाती Rione mamela fate manarana ny hanina hoanina zao tsisotsony
2: sotsotsy fotoana ny famezana tsintsombo zao azonao fa zavatra tiana ambary reo zany chauffeur sy receveur taolo zay reo misy fady amanjanaka ny tsirairay avoko dia ny zavatra mba takinay zany dia hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aizaaiza zay mamelo ma de manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina